0: মূল চাবিকাঠি। এটা একটা সার্বজনীন সত্যি। আর একসঙ্গে কাজ করলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস বাড়ে। আমরা এখন প্রত্যেকেই একা একা বাড়িতে থাকি, তাই আমাদের মানসিকতাটাও কেমন একা একা হয়ে যায়। সেই সুবাদে আমরা যদি কোনো কাজ একসাথে মিলেমিশে করি তাহলে পারস্পরিক সহযোগিতা অবশ্যই বাড়ে। এবং বড় কোনো কাজ বা বাধা যা একজনের পক্ষে অতিক্রম করা খুবই দুঃসাধ্য, তা সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই জয় করা যায়। তাছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক কিংবা জাতীয় কোনো ক্ষেত্রে, জাতীয় যে কোনো ক্ষেত্রে ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই। ইতিহাসেও প্রমাণ মেলে একটা বিভক্ত জাতি খুব সহজেই পরাজিত হয়, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সমাজ যে কোনো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাই বলা যায় একতাই উত্থান, বিভেদে পতন। একদম ঠিক। এই কথা দিয়েই আজকের শুভ সকালের আসর আমরা শেষ করব, এবং শেষ করতে করতে সকলের কাছে অনুরোধ রাখব, আমরা একসাথে বেঁধে বেঁধে থাকব এবং একসাথে মিলেমিশে কাজ করব। সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, এটাই আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়ে যাব। আমরাও এই কাজ করব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও শিক্ষা দেব, যাতে তারাও একসাথে বেঁধে বেঁধে থেকে একসাথে সবাই কাজ করে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও কথা হবে অন্য কোনো একদিন শুভ সকালের আসরে। এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে শুভ সকালে আপনাদের সঙ্গে কথা বললাম আমি, মধুমিতা সাহা। আমাকে কারিগরি সহায়তায় সহায়তা করলেন মন্দার গোস্বামী, আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.2 মেগাহার্জে FM প্রচার তরঙ্গে। এখন হিন্দিতে সংবাদ আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হবে, এবং 9:05 ইংরেজিতে সংবাদ আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হবে। এখন হিন্দি সংবাদ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री

0: शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.0 lakh crore rupees this afternoon. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve its $1 trillion US dollar export target, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter of the current financial year. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said, to achieve the target, goods exports will need to increase from about $440 billion to around $530 billion, while services exports will have to rise from roughly $421 billion to about $470 billion.
2: Our aim is to grow in the current year. We were $863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about $530, $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470.
1: Gujarat anti-terrorist squad ATS has arrested 8 people associated with a Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed, JEM. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of JEM to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activity. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino.

सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज़ों में आप सुन रहे थे रूबरू फिल्म का गीत। सोनिक सेन ने इस गीत को लिखा था।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सोनू निगम की आवाज़ में और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक और प्रीतम ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों आज है 4 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और ये बताना कि मिलजुल कर काम करने से समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन अधिक सशक्त बनता है। एक अकेला इंसान जिस काम को थोड़ी अधिक समय में कर सकता है, वही काम साथ मिलकर कम समय में किया जा सकता है और साथ मिलकर सफलता तय करना ये बताना है। जब व्यक्ति अपने हित के साथ समाज के हित को भी महत्व देता है तब विकास का रास्ता मजबूत होता है। आइए संकल्प लें, सहयोग और साझेदारी की इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2026 की ये थीम है, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ये थीम समाज में न्याय और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। सुनते हैं हम ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से सजाया था मिथुन ने। आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं तक, आपसे आज्ञा चाहते हैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने की। दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक कम चर्चित संगीतकार की बातें।

कई गाने ऐसे हैं जिनमें उनकी बांसुरी ने मधुरता पैदा की है। और कई गाने ऐसे हैं जहां सुनाई देती है उनकी शहनाई की मीठी तान।

रामलाल चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1922 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई।

रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो राम

लाल राजकमल स्टूडियोज में आ गई और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का तारा।

इसी दौरान राजकमल स्टूडियोज यानी वी शांताराम ने रामलाल को बाहर की फिल्में करने की इजाजत भी दे दी। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी एल संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था लेकिन अफसोस ये फिल्म बंद हो गई। अब रामलाल बतौर बांसुरी और शहनाई वादक फिल्म उद्योग में अपना काम करते रहे। बतौर संगीतकार उनकी ख्याति अभी बननी बाकी थी लेकिन बतौर बांसुरी और शहनाई वादक उनकी बहुत ख्याति थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शहनाई के सुर छेड़े, जैसे फिल्म मुगले आजम।

सन 1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानो। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

सन 1957 में आई फिल्म नागलोक। भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था।

0: పక్షి
1: सन 1960 में आई माया मच्छेंद्र। इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे। ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत।

0: दिलचस्प बात यह है कि फिल्म माया मच्छेंद्र में संगीतकार रामलाल के सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने।
1: जा जा

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनिए। इसमें रामलाल जी की शहनाई भी सुनाई पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि रामलाल ये गाना खुद गाना चाहते थे।
1: तुम तो रहो सलाम।

0: फिल्म सेहरा का सबसे प्रसिद्ध गाना है ये। आपको बता दें, इस गाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया है।
1: तुम

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगा। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कौन वो लोग बाद में आए थे, टांगा वाला पीएल संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे टांगा वाला, राज कपूर वैजयंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से हुसन बानो बनी, वो गाना खरीद कर हुसन बानो बनाए प्रोड्यूसर।
2: गाना कौन सा था?
1: प्यार

0: पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
1: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए।

जीत गया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने सी एच आत्मा से दो गाने गवाए थे। एक गाना था ये
1: मंडवे तले हरी धुके दो फूल खिल रहे हैं,
0: और सी एच आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये
1: एक पल जो मिला है तुझको जीने के लिए।
0: दिलचस्प बात यह है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था, और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये गाना।

0: बतौर संगीतकार रामलाल जी का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनमोल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ।
1: नहीं मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिसे में पैसा रहता था। हमारे जब जगह दूसरा राज में होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर।
0: 4 जुलाई 2004 बारिश के दिन संगीत की दुनिया का

0: ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी ना छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुनें तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।
2: এতক্ষণ বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান আকাশবাণী মুম্বাই কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হলো। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.2 মেগাহার্জে FM প্রচার তরঙ্গে। এখন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হচ্ছে।

0: The four pillars of Vikashit Bharat: youth, poor, women and farmers must remain at the heart of our policy making and governance. Parliamentary democracy is not confined to enacting laws. It is equally about ensuring accountability, transparency, inclusiveness and a responsive governance. True progress is measured by our ability to deliver justice, opportunity and development to the last person standing in the queue. As I conclude, I urge all the members to devote your time, energy and wisdom to empowering the underprivileged and fulfill their aspirations. Your conduct inside and outside the House should inspire public confidence and strengthen democratic institutions. With your permission, I repeat, your conduct inside and outside the House should inspire public confidence and strengthen democratic institutions. Let us work with dedication, integrity, and a spirit of cooperation to build a prosperous, equitable, and compassionate West Bengal. I congratulate the West Bengal Legislative Assembly and its Speaker, Sri Yatindranath Bose, for the exemplary arrangement that he has made and has made this two-day session a grand success. Thank you. Jai Hind.
1: Thank you, sir, for your words of wisdom. May I now request Sri Om Birla, Honorable Speaker, Lok Sabha, for his address.
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा के दो दिवसीय प्रशिक्षण समारोह के समापन समारोह में हमारे बीच में पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आर एन रवि जी, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है और उस अनुभव का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरियाणा राज्य के महामहिम प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, जो बंगाल की धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने बंगाल के सामाजिक राजनीतिक साहित्य लेखन सहित यहां के बदलाव के लिए एक लंबे समय तक जिनका अनुभव रहा, उनके अनुभव का लाभ हमें मिला है। अभी कुछ दिनों पहले सीएपीए के सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा में भी हमें उनका मार्गदर्शन मिला था। उनका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देता है, दिशा देता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र बोस जी, जिन्होंने एक लंबे समय बाद इस विधानसभा के अंदर प्रशिक्षण समारोह आयोजन किया, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक जिनके विधायक रहने का अनुभव है,

सामाजिक राजनीति क्षेत्र में अनुभव है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के रूप में जिनका मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहता है, तपस राय जी, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन आपको मिला, उड़ीसा की अध्यक्ष, सिक्किम के अध्यक्ष और अन्य माननीय अध्यक्ष महोदयों का भी, सांसद महोदय का मार्गदर्शन आपको मिला। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, निश्चित रूप से मुझे पश्चिम बंगाल में बहुत सालों बाद आना हुआ। मैं 7 साल से लोकसभा अध्यक्ष के नाते दायित्व निभा रहा हूं, लेकिन इस विधानसभा में लंबे समय बाद प्रशिक्षण समारोह आयोजन हुआ और प्रशिक्षण के साथ देश और राज्य के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसका मार्गदर्शन मिला। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी धरती पर तप तपस्या से जो अल्प आयु के अंदर जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद देश और दुनिया के अंदर उस कालखंड के अंदर उन्होंने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का ध्वज लहराया, नेतृत्व किया, उनको याद करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी को जब हम याद करते हैं तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति शह शरीर रहे न रहे, लेकिन व्यक्ति का जीवन दर्शन, उनका विचार, उनका कर्तृत्व और लंबे समय तक उनका दिया गया योगदान पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन भी देश के युवाओं को सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक नेतृत्व को एक नई दिशा देता है, हमेशा ऊर्जा की, समर्पण भाव की, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हम मानव जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं और युवाओं की ऊर्जा का सामर्थ्य क्या है, ये स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है। और आपको भी यही दायित्व आज मिला है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको चुनकर भेजा है। ये विश्वास, ये भरोसा कायम रहे, हम उनके विश्वास, भरोसे, उनके आकांक्षाओं को भी पूरा करें और उस राज्य के विकास की नई इबादत भी लिखें, क्योंकि ये राज हमेशा विचारों के, आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति और अलग अलग कालखंड के अंदर एक नए बदलाव को, राष्ट्र को नई दिशा देने का राज्य रहा है। और इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कालखंड की विधानसभा के सदस्य के रूप में आपके विधानसभा के अंदर आपके वक्तव्य, आपके विचार, आप संसदीय संवाद, चर्चा, लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा, चुनौती और उनको सपनों को पूरा करने का दायित्व आपका है। और मुझे खुशी है 2 दिन तक आपने जिस गंभीरता से, जिस तत्परता के साथ, उत्साह के साथ, मनोयाग के साथ, मनोयोग के साथ जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है वो आपके जीवन में नई दिशा देगा। लेकिन सीखने और अनुभव और विचारों का साझा

करने में कोई विराम नहीं होता। ये तो हर रोज सीखना पड़ता है, हर रोज अनुभवों को साझा करना पड़ता है, और तकनीकी डिजिटल युग में तो हमें रोज देश और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप यहां से नई चेतना लेकर जाएं और जीवन में इससे स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता कि आपको विधानसभा का नेतृत्व करना, राज्य के नेतृत्व करने का मौका मिला है। और हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक बने। हम एक विधानसभा के विधायक हैं, यहां हमारा नेतृत्व हमें करना चाहिए, लेकिन राज्य के आकांक्षी राज्य की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कार्य योजना, कानून बनाना, राज्य के विकास, नवाचार, उसमें किस तरीके से विधानसभा संवाद चर्चा से हम राज्य को नई दिशा दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। और इसलिए जीवन में हमेशा उत्साह रहे, उमंग रहे, पैर में चक्कर रहे, हमेशा अपने क्षेत्र सहित राज्य में घूमते रहें, पैर में चक्कर, सीने में आग हो बदलाव की, नया देने की, और सिर में ठंडक हो। जब संवाद करें, चर्चा करें, तो ठंडे दिमाग से चर्चा करें। जब जन संवाद करे तब भी, और विधानसभा के अंदर भी, नारेबाजी करना, सदन को व्यवधान करना, सदन के गतिरोध करने से कभी कोई नेता नहीं बनता। अगर सदन का नेता बनना है तो तर्क से बात करनी होगी, तथ्यों से बात करनी होगी, विचारों का संप्रेषण करना होगा, और किस तरीके से जो कुछ भी अनुभव है उस अनुभव को इस विधानसभा के माध्यम से, और जो नवाचार कर रहे हैं उस विधानसभा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम करें। इसलिए विधानसभा का ये लोकतंत्र का मंच बहुत प्रभावी होता है। यहां से बनने वाला हर नेता राज्य देश का नेतृत्व करता है। इसलिए मेरा बार बार आपसे आग्रह है कि सीखने और सिखाने के साथ जो कुछ भी समाज जीवन के अंदर एक मतदाता से आप कुछ चीजें मिलेगी, विधानसभा के अन्य सदस्यों से मिलेगी, अन्य विधानसभाओं के सदस्यों से विचार मिलेंगे, हमेशा विधानसभा के अंदर जब आप अपने विचार को रखें तो सब आपके विचारों को सुने। जब आप तर्क रखें, तथ्य रखें, विचार रखें, देश और राष्ट्र हित भी हो, प्रदेश की जनता में बदलाव कैसे किया जा सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आप समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज आप, जनता आपको इसलिए चुनकर भेजती है कि आप उनकी कठिनाइयों, उनकी चुनौतियों को तो सदन में रखो सही, लेकिन उसके साथ साथ इस राज्य के विकास के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी आप हो। क्योंकि सरकारों को भी विधानसभा के एक इस कक्ष से जो आवाजें मिलती है, जो अलग अलग स्वर मिलते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, अलग अलग विचार मिलते हैं, हर विधानसभा की कठिनाइयां चुनौतियां मिलती है, उसको सरकार अगर सकारात्मक रूप से ले कि एक विधायक ने एक प्रश्न उठाया तो क्यों उठाया है, क्या कठिनाई चुनौतियां थी, एक विधायक ने अगर प्रदेश की कुछ चुनौतियां उठाई है तो क्यों उठाई है, अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है तो समाधान होता है, और समाधान होने से ही राज्य का विकास होता है। इसलिए

0: मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि जीवन में सादगी रखें, सुचिता रखें, विहार में विनम्रता रखें, लेकिन हमेशा प्रदेश के विकास की आग आपके सीने में लगी रहनी चाहिए। हमेशा लोगों के विश्वास भरोसे को और मजबूत करने का काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सब इस विधानसभा की चर्चा संवाद की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। हम इसकी उच्च कोटि की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा हो जहां चर्चा संवाद की गुणवत्ता बढ़े, जहां पर सब विचारों को आए, सबके अनुभव आए और निश्चित रूप से उन अनुभवों की का लाभ समाज और देश को मिले। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब कानून का विषय हो तब हम जनता से फीडबैक भी लें, सरकार को सुझाव भी दें, विधानसभा में कानून बनते हुए अपना पक्ष भी रखें, क्योंकि कानून जनता के लिए बनते हैं। जब विधानसभा कानून बनाती है तो हर विधानसभा सरकार का एक ही मत रहता है कि उस कानून से उनके जीवन में कैसे सुगमता आ सकती है, उनकी जीवन के अंदर जो दिनचर्या के काम में जो अवरोधक आते हैं उसमें अवरोधों को दूर करने में काम आते हैं। और इसीलिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है रिफॉर्म, हर चीज में रिफॉर्म की आवश्यकता है। एक आम व्यक्ति की चुनौतियों के अंदर सरकार का कोई भी सिस्टम अगर चुनौतियां बनता है तो उसका समाधान, उसका रिफॉर्म इसी विधानसभा से निकलना चाहिए। हमें एक आदमी को जितनी हर कार्य में सुगमता हो, एक आदमी को लगे कि ये शासन मेरा है, ये शासन के विधायक मंत्री मेरे जवाबदेही से काम कर रहे हैं, उतनी शासन की सफलता होगी। और इसलिए आपकी सफलता भी ये होगी कि आपके पास अगर एक सामान्य व्यक्ति भी आता है तो सामान्य व्यक्ति के और कागज जो उसकी आकांक्षा है वो कागज नहीं है, उसके सपने हैं। आप उसके कागज को, उसकी आकांक्षा को, उसके सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं? जवाबदेही से काम करना, अगर एक सफल विधायक बनना है जवाबदेही उत्तरदायी हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में शुचिता हो, हम समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज हमारे मार्गदर्शन पर चलता है। इसलिए राजनीति के अंदर सामाजिक जीवन में हमारा जीवन जितना साफ सुथरा, हमारा जीवन जितना आम जनता के लिए सुलभ होगा, हमारा जीवन लोगों को पारदर्शी नजर आएगा, उतनी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, संसदीय संवाद की गरिमा को बढ़ाएंगे, तथ्यों तर्कों से इस विधानसभा में चर्चा करेंगे और ये राज्य की विधानसभा समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करे, जवाबदेही से काम करे, उत्तरदायी शासन प्रशासन पारदर्शी बने। इसके लिए आप कटिबद्ध होकर, कड़ी मेहनत होकर काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी को, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी को, विधानसभा की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया। लगातार जीवन में हम इसी तरीके से सीखते रहेंगे, अनुभवों को साझा करते रहेंगे, विचारों को साझा करते रहेंगे और अपने ज्ञान को अर्जित करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना बधाई।
1: थैंक यू सर फॉर योर एनरिचिंग वर्ड्स। मे आई नाउ एड्रेस रिक्वेस्ट श्री आर एन रवि, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বন্ধু আসুন আমরা লোকগীতি শুনে নিই, শিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাস।

0: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, একটু পরে শুনবেন আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুনীশ শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
3: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ चिप का उत्पादन का लक्ष्य रखने के लिए बधाई दी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विकास को रेखांकित करती है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालीन योगदान को महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सैन्य कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। प्राइम

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

0: गीतकार भरत व्यास पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।